ओइनाम सनातन मैटेदेगी पेनाया कैरोल ताबिरे मथंग लौबीरसी तंथा म्यूजिकल सेंटर की सैसक सिंह सकप इमालय पापू सैथा जब शेमा खुरुमजरी इमा संगलेन फिजोल थोलीबी लूरब लाइजना लूरब लाइजगी इरिक लोइनना हाइपा लेपाना ताइबन पानसिन थुंगना येलीबी

राधा गोविंद की रुच्य मऊंग से जीएंग बदमी फम हो गया दीता मरुन तराग मरी मंदा अनि के मानव लेती रीता कया तो फज घर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
4: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
3: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Election Commission of India, ECI, has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress, AITC, regarding competing claims about the party's organizational elections

0: हेलो हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: बंदरे भाई के नंबर फजिंग चिनिंदगी आओ एवं ये बटो बने मैदाम।
1: अकरम बा मणिपुरी फिल्म।
0: ओ वाचू आरे बा फिल्म दगी चुकी के बा निंची जाबी नंची आगी बा नानो आदि बा इसे दो आमता हुड्रोम ना उबोने चपड़ो आमता कादगे बा
1: ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯇ ꯇꯥꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯞꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯁꯣꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯏꯈꯨ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯖꯤꯇꯦꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ, ꯁꯣꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯀꯣ? ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯍꯨꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯖꯔꯛꯑꯒꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝ

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग करम बा फिल्म।
1: मैम। गुड मॉर्निंग आई गुड मॉर्निंग मैम आई हयांग थांग सुम ने थाबा थांग सोल मैम मैम आई ना खान खाली बेस ने जे मपु मई गी छई मपु मई फिल्म ले तो
0: ले ये ले मपु मई फिल्म जी करम बा
1: दे ये अफाव ग रे स्मिता ग ना थप ने नंग ना आई गी दम ले पी र बा बे छई जदि ले ग दरा
0: मपु मई फिल्म गी कैनो ग नंग ना आई गी दम ले पी र ले नि ले नि
1: मैम सी हुई ताकि
0: अदो कोई तभी नहीं भापी गया था
1: अभी नहीं मुझे कोई कंगना चाहिए ना थोड़ा यों ना चाहिए बंद मगर मैं अपने मकान तार के मैम सी यों ना
0: सोम ने तभी नहीं बा पाव में दी रेस मिता नहीं के पन बकान जेल दा बिमोल पी बोलना सहरिंग बा पाव में सामना सहरिंग बा इशे जी कुदल तंजे रहेगी क्वा
1: अलग सही मैम मैं अपने मकान तामी नजर आ
0: तुम बच्चों तराम उपचारी
1: अलग सही।

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मिस
0: गुड मॉर्निंग।
1: मिस आई फोन दो जरी जी समय चेंज करो मुझे भी समय जाओ खुमा दो को गई मिस
0: करम बा फिल्म से ताबी के दबा
1: मिस आई ना ताजे नहीं जी को कि तुम जाओ वो मिलम बा थमो ये फिल्म दिखा को कि टाइटल सो को कि ना वो जा अभी शरीता का जी नहीं कर सकता
0: হয় হয় না বইগ সারিতা গাজমিগ সাকা এল থইবি সাইরেবা এম কে নজু সাইরবা ইসেসিক হাপির হয় হয় সামনে পাবিবে ইসে নবই আমি সারিতা আনিগে পূর্ব খঞ্জেল এল থইবি সাইরেবা এম টিকেন আমি নজু সাইরবা ইসে কুদল তামজরগে কো
1: থ্যাংক ইউ
0: তাম নোচরি।

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग।
1: हाँ मैम, ई रिक्शा वन खाई देगी अगर चले मैं। हाँ मैं
0: करंबा।
1: थॉम थॉम जाने के इन खरब दे सुख लंबे की ना। हाँ नॉर्मल पहाड़ी पानी मसा है ना खाना बदने सक पा अरुगा तो उस दिन चीजें मैंने सोच पाऊंगा तो निशा कौशल के मैं था नंगी माल तो
0: ada koi ki tabi ning ba hapira roi dra
1: ah tabi ning chi oi nam de gi su ze kan ta oi nam adu ga kya me san tu gi ram ba pon de na ni meng bam abom isa adu ga sem sana ja ba koi adu ga thorum sa tabi re me an pon na mat ma ta me sa
0: ada ai som de kan ta hai ja o ge nga sai ge som ne sei jam phajana sak pi re do kitang ga sang na sak pi be ya ga dra
1: আসলে আওরা বিহে তাজি বিষয় নিয়ে কেন তো না হয় কত হল দুসরম গে
0: হয় হয়

0: हेलो, गुड
1: हेलो,
0: मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग करम बा फिल्म से ताबी के दबा.
1: आई बोले ना फिल्म की मुस्तफा बन के सफा तुम लोग ने नसीब ही आई बोले तो मत होगे ताबी के दबा
0: कोई शोम की मिंग दी तक पी रही थी. पुष्पा रानी के कॉन्सेल जा ꯑꯦ ꯇꯣꯝ ꯆꯧꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯏꯊꯟꯇ ꯇꯥꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ

0: हेलो,
1: हेलो, गुड
0: गुड
1: मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग। कर मा फिल्मी सही ताबी निंग बा।
1: मैम। मैम उसी दे निंग्शिंग कुन फिल्म दगी नाउ बॉय का इराय ले मगन अच्छे सीखी बा। आई की नुसी बाबू उबी

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
2: जी।
3: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
2: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
3: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
2: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश

0: और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ।
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी, मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
8: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
6: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
8: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
6: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
8: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
6: अच्छा।
8: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
6: ये किस भाषा में है?
8: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है, उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
6: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
8: हाँ बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
6: अच्छा।
8: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
6: अच्छा।
8: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
6: अच्छा।
8: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
6: एपिग्राफ।
8: शाबाश निधि।
4: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
8: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
4: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
8: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
6: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
8: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
6: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
8: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
0: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
1: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
0: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: जी।
0: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
1: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
9: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है

0: शाबाश शाबाश मोती, शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस, वहीं खड़े रहो। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। जहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा, वाह। और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे, आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं, पर हां,

0: ना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
0: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा,
3: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
4: उसका भी इंतजाम है।
3: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
4: देखो हा? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
3: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
4: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
3: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
4: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग
8: हौजी गदम नताबिरे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCER तीन पुटोक पठोरम उमंग।
9: Presenting Mahindra's all-electric SUVs, the BE6, XUV9e and XUV9S, with a real-world range of over 500 kilometers, lifetime battery warranty and ultra-fast charging from 20 to 80% in just 20 minutes. So what are you waiting for? Visit Shiv's Auto Imphal for test drive today and bring home your dream car.
8: Akashvani Imphal. How's it going? Nasigi. Sangai channel ge ayuk ki pung tarit konjal na somda sandok se kibat horum. Hello Manipur Hakchel. Thorum si data visi. Sakshu phajahan bada laser ge thautang. Expert oina lengsin biri bana. Dr. Navikisor Haubijam, Senior Consultant, Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Chiza Hospital. Thorum lantok biri bana. Haikrujam Devendra. Thorum si, Chiza Hospital ge tengbang galoinana sandok se bat horum ni.
10: Hello Manipur Tawiri Wissingbu ahan bamaktada taram nokchari ngasi sirayu numit oibana mahushagum haksel ge live phone in program thamjari haujik tu suningching jakre chali bas tha july si haksel gi tongan tongan bamuro oib numit singi marakte gi lakli ba july gi tarik tara manga si su malem gi plastic surgery gi numit oibanina plastic surgery gi yamna maru oib masa amsu oiba koigi haujiki ngasi ekhoina khana jagadori ba hiram asi sakchu phajahan bada akiemo gi ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯦꯖꯔ ꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯖꯒꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯊꯦꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔ ꯍꯧꯕꯤꯖꯝ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ
11: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
10: ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯅ ꯊꯝꯖꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤ

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक शाह।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति जेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से

0: संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर

0: दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगा चैनल है। मीडियम 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी भाइयों का कार्यक्रम अब आरंभ होता है। फौजी भाइयों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म हमारी अधूरी कहानी से अरिजीत सिंह की आवाज में इस गीत के साथ। गीतकार है रश्मि विराग और संगीत जीत गांगुली का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गीतकार है प्रसून जोशी और संगीत जतिन ललित का।

अभी आपने सुना फिल्म गजनी से बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में एक गीत, गीतकार प्रसून जोशी और संगीत A.R. रहमान का। फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब प्रस्तुत है फिल्म गुरु से हरिहरन, अलका याग्निक, A.R. रहमान और मोहम्मद असलम का गाया गीत। गीतकार है गुलजार और संगीत A.R. रहमान का।

कार्यक्रम के आखिरी पेज का फिल्म खामोशी से कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत जतिन ललित का।

आकाशवाणी इम्फाल अरुण चीन बहुना से टेनिशन सिमरी पाद खमता पाउपिंग मणिपुर चीफ मिनिस्टर क्विरो युमनान खेमचान सिंह आया बायो रिएक्टर यूनिट बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हि थरकत सामिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट कतोंगली VPGRAMG स्कीम हि आज स्टेट वी चीफ मिनिस्टर पेंग थरकत सामिया कला लोकसभा लोंगशिम वी तुखक गुर ओम पिल्ला पार्लियामेंटरी आईना लेजिस्लेटर्स पिंगली आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम सिंगामिया और पाउपिंगे मैसाइन अनांग मणिपुर चीफ मिनिस्टर क्विर युमनान खेमचंद सिंह ने आया बायो रिएक्टर यूनिट फॉर बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हि इम्फाल वी लम्फेबा तिली खले CSIR NEIST लेबोरेटोरी ली थरकत सामिया थरकत साखमी प्रोग्राम हिली CSIR NEIST आईना इनक्यूपेट खनी अलूली मैया खंगरोग सोय सांगरोग बायो फर्टिलाइजर्स सिजिनलग ऑर्गेनिक फार्मिंग खुगासर खबाई कचिहि विकसित भारत एट द रेट 2047 खमदाय निग्रिन आखना मणिपुर ले अरी अरी हेक्टर शामति लुपम लेगा कला अरी हेक्टर शामति लुपम ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्टिवेट सा खबाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओट मंग खनिंग महुन दलैद कुर खेमचान हांग मेघालिया चीफ मिनिस्टर क्विर कर्नाट के संगमा आया वर्टम मथाद जिसुट मिसब खबाई फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वी टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमिक प्रोग्राम हि थरकत सामिया वर्टम हिपोंगली कथर अवर मुरुम कसंग कल ओजा पिंगली अतम अतमली ट्रेनिंग खमी हिन कान खना सम कफंग आइना सोद डेटा एनालाइटिक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज कल सिटी टेक सोलूशन पिंगी पाइला कई थे कई सम्बंग हांग अरुणाचल प्रदेश गलि तिर कफोंगाइन साजग हाई पिंजली सेंटर सरकार वी STRF टीम कल NTRF टीम अपम पिंग ग्राउंड रियलिटी फामनाग जीव आतीसुद सरकार खंगजन पांगलान सारद चीफ मिनिस्टर क्विर बेमा खान्तुन हांग मेघालिया लयालुंगली सरकार थान्द सरकार वी रई कसंग ल खंगजे खुरा खबाई अपोंग पिंगली निंग्रिन साद खल हिली कदम मिसरलो कल गलई हिली करप्शन मखल गलई नसा खबाई सरकार ओटमगा खुद खल हिली खोक साद कदम भी खबाई चीफ मिनिस्टर क्विर लालतु हौमान पोहर इंडिया गलई कुमरीद विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VPGRAMG स्कीम हि अजोद चंग खामू सोमी कहा थी नॉर्थ ईस्ट गलैली आया VPGRAMG स्कीम हि स्टेट पिंग चीफ मिनिस्टर पिंग खामू सोमी सुप्रीम कोर्ट ने हम थीन खमी आतीसुद मणिपुर गलै आलोंगली कचि कथा हूबकचि हा ओटसोट मरा सोक्रंग लख रीद निखर लई खबाई वी सोंजा हि मणिपुर पुलिस ने मखोक मिद इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम वी ओटसीन हि सेंटर सरकार ने कथान वी आजिंगली ओटमंग सिंगाद लै इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम हिली रिचुम नाउ कतोंगना मुसुन पाई मई खबाई इमरजेंसी नंबर 112 हिली पाउमी बाइर कल पुलिस इमरजेंसी सर्विसेस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेस NHM रेफरल ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस सर्विसेस वीमेन हेल्पलाइन चाइल्ड हेल्पलाइन स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस कल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट SOS पिंगली पाउ मी खबाई इमरजेंसी नंबर 112 हिली फोन कॉल सबाइर नना दखले पाउ पिंगी आकाशवाणी इम्फाल वेन चुहमी दखलेन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AIDC पार्टी ली मखमया राइवल फैक्शन चिया गुइलुम ममता बेनर्जी कल पार्टी वी अखोक गुइलुमला रीता प्रता बेनर्जी अने वी वांग आईना अरु अरु पार्टी वी आलोंगली खिपाना पार्टी लीडर फुंगरान खल कची वी मरामली अखोन सोक्त खल हि वी मरामली राखरा मंदे थंग जिन पुंग फंगा मखाइली नहान कका वी लाइरिक मिसंग खबाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न चिजमी हाइरा।
Prime Minister Kuri Narendra Modi aina awi kamashita ngsoda Japanese ngalei wi Prime Minister Kuilumvu Sanai Takaichi anina aya New Delhi li tharada thrukakshung India aina Japan wi joint annual summit kachip chili ngalei khani wi thring haiping li terrorist ping na rod khamra thangsang khami kala thik hai chingum pingli bahalkam Jammu and Kashmir abam pingli terrorist being na attack salaga micham bingwi mangla siman mi kahai mithit wi ochot hili maring ka pha kala makhamya phongsok ngorum haira maramalaila micham bingwi mangla sa siman khami mi khayum kala lan khangapom hikadata whatsapp ping hi okthuina shami da mushun pichar sami khawai nga gaung ngorum haira mayangrok kahai kala shoi sangrok hai chuwa ti shuda Terrorist pingwe finance network tharing lempingli games halaga kapam kala atam kjida thari apam pingli makanung makanwa sada khalai hikata whatsapp hi sashimit khawai ngalai khanina khok sada ngarar ngarum ra da tulep khuya Bihar ngalai we governor lieutenant general retired Guir Said Ada Hasan kala state for external affairs minister Kuir Babitra Mekharida Anina Ache Iran Liyawada Mawan Satwik Haya Iran Ngalewi Supreme Leader Kuir Ayatollah Sayyid Ali Khamenei Funeral Ceremony Li Vazanga Achu Bao Mangachangrang Lagat Ladrida Khabadaya Pauping Pamili Shitli Manipur Chief Minister Kuir Yumdan Khemchan Singh na aya bioreactor unit biofertilizer production he Tharkat Samiya North East State Kutongali VPCRAMG scheme he aya state with Chief Minister Ping na Tharkat Samiya Kala Lok Sabha Longshim we Tuikwaka Guir Ompila na parliamentary aina legislators Ping li aya orientation program Singamiya Aju bau hilang jangan hanya bau pinggi agak sifani infal wena jua kamina. Aruila nganalu sitsa, kesi simter kalang sanau pinda kesa kerala meron meron ena. Jumpa lagi.

0: ꯂꯤꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯝꯃꯒꯅ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯎꯒꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁ ꯑꯦꯜꯖꯥꯏꯃꯔꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯦꯜꯖꯥꯏꯃꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯗꯤ MRI ꯇꯧꯕꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤ MRIꯗꯁꯤ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯦꯜꯖꯥꯏꯃꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯟ ꯄꯤꯗꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯜꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯒꯜꯂꯦ ꯀꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯒ ꯇꯨꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯒꯀꯣ ꯆꯠꯄ ꯇꯨꯁꯟꯒꯦ ꯇꯧꯋꯦꯅꯀꯣ ꯇꯨꯁꯟꯒꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯨꯁꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇꯨꯁꯟꯒꯦ ꯇꯧꯋꯦꯅꯀꯣ ꯇꯨꯁꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯟꯖꯕꯗꯣ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯨꯒꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁ ꯈꯣꯡꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯆꯥ ꯆꯥ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯧꯁꯟꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯥꯏꯅꯦ ꯐꯅꯦꯛ ꯁꯦꯠꯄꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯈꯪꯒꯥꯎꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯄꯜꯂꯦ ꯇꯨꯁꯟꯒꯦ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯆꯥꯗꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯍꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯍꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯜ ꯀꯪꯈꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯊꯅꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯣꯡꯗꯣꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯩ ꯈꯨꯅꯤꯡꯅꯒ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯜ ꯗꯦ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯈꯔ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯃꯈꯜꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯁꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯗꯦꯖꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯋꯤꯗꯤꯟ 10 to 15 minutes ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅꯣ ꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯦ ꯆꯥꯔꯣ ꯋꯤꯗꯤꯟ 1 month or 1 week ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯈꯨꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯟ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯈꯨꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯗꯅꯕ ꯇꯨꯁꯟꯒꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯀꯤꯌꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯟꯕꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯀꯤꯌꯔꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯒꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯔꯛꯄꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯄꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯀꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯒ ꯑꯣꯔ ꯁꯨꯝ ꯋꯦꯗꯔꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔꯕꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯅꯥꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯀꯣ ꯍꯩꯔꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯀꯣ ꯑꯍꯟꯒꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯤꯠꯊꯅꯥꯟꯊꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯨꯝꯕꯁꯤ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯤꯌꯔꯁꯤꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯍꯤꯞꯇꯅ ताराग लेब बेडरीदन नोइब अहनजिं लेतब नतेको सुगुमबगी केयरदसु कितंग दि वाटप तुमाइना कले केयर वाटप हाइबदि मोइन नुसिदबगी नतब अखुइगी नॉलेज कितंग वाटप हाइ तारेको अहन नमगी केयर सिजु तौब हाइजे तंग दि खेनरक दोइनी को नहामगदि मानारो अदम एग्जांपल ओइनै दुम हाइजगी अहन नम बेडरीदन नोइना फमुंग लेब अहन ताराग लेब अहन ओइरगदि आइन हाइजनिंग बहाइबबु अहनददि असाइगी पिजा बिथक तौबदजु अहन न फना लेंगबद कितंग वारग सुको पिजब मतमदा हिपग पिजबिदब थिदि अमुक याम दोइना एस्पिरेशन तौब हाइन पिजब मतमद हारग खुइन लंगसगुमब चंगरग अदुनमो चोब निमोनिया थोग चोब इन्फेक्शन म थोग अदुनमो हिंगबगी चांगसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हनम निंगजग दबजे अदुनमो का हेनमो हंदगीब को अदुमाइन तौब याउ अदगी बेड सोरैन खुइन दुम मफममद प्रेशर जे पिसल लग हिपग अदुम लैसलबनि नको अखुइगी निंगदबु ओइरो खुनिंग ओइरो को सुगुमब फैगंदबु ओइरो सुगुमबद अखुइगी स्किन जे तंग इन्फेक्शन तौरग चाथत लग बेड सोर तौब हाइन को सुगुमब जे जाम तोइन तोइन थिंगनि फमुंगद लैब हनसिंग ओइरगदि तंगैन चेक्सन गदब हाइरगदि खुइन मागी पोजिशन जे पुंगनि खुदिंगि चिकन सौबि विल चेयर लैब अहनसिंगी ओइरगना मिनिट रांगा दैन कुन भोकि चांगद अदुम मागी पोजिशन दे चेंज तौबि हाइबदि गसाइगी खुइन मफम अमद प्रेशर पिसलग सुम लैसनब हाइबसे मफम दुदा खुइगी नुसी नुसागुम चंगझनदबनिना पोजे पथरक पहेलिदन अनु स्किन जु चमाने हनमगी स्किन जे देम फ्रेजाइल ओइ मोइदि यम थोथो नो विद अदुन वन्स इन्फेक्शन तौग्रगदि अमु सरुगुम बयौबसु दुम याउरिनि को मनुंगि मसलगुम ब अदु हेना दुम कुसलग खुइगी इन्फेक्शन जे तौगिब याउ बेड सोर जे अदुन वन्स बेड सोर तौरगदि हनमगी पुंसि से सि चुका हेन माइगी एक्सपेक्टेंसी जे आम हनदरे हिंगबगी चांगजे को अदुन इन्फेक्शन नंबर मोर यारि मतिकति माइन पोजिशन चेंज तौबिबा अदुगा फरक ताय हायरगसु खैने एयर मेट्रेस काइन को एयर मेट्रेस नमु प्रेशर जे रिलीफ तोहन भाइताय जगा सिद खुइगी ममों पाक जे हितंग मैद समगा माइगी लेंगबगी अदु माइन दुम मोमेन अदुम तोहनबा को सिगी पोजे हन सुमाइन हिपतन लेब हन सिंग याम दरकार ओय को प्रेशर मसान लेंगबंग अमजा मे आ मेट्रेस ने लेंगक पा अदुरगदि अखोइगी माइगी कन्न फमजल लेरम ब जगा अदु लेंगक पकांद खितंग अमु अखोइगी नुसिनु जा चंग बाहाय तारने को अदु माइन प्रेशर एरिया जे खितंग रिलीफ तोहन बाहाय तार अदु रेडी बेड सोर गी चांस अमु याम न हंधरक दोइनी को अदुगा हिदाक चाबगी नियम सिंग जु गसाइकी होय हिपग पिजबिदब खितंग ओर जुंगा खलग नंगन अदगि चार मतुंग द जु मिनिट कुन द ओर जुंगा तंग वार जु वान तंग फमहन बको नॉर्मल पोजीशन द हाइपे तंग फमन बा हिदाक चाबगी नियम द जो दुम हिदाक खरा अदुम पुल पुल फुकचन मजु दुम याहरिनी को हनजे वन टाइम द चाबसे अदन हिदाक मखन खरा दुम लेय समन दुम हायर द खोइन थायरॉइड की गुली से अच्छा खाव की गुली ग दुम चामिन अब चखाव गुली से याम बा अयुक त दुम चखाव हांगि ngai दै चाइ को अ थायरॉइड की गुली से थारो नियम बगी चाब गुली से जु चखाव हांग चा दुइने बा दुबो कन्फ्यूजन खरा लेय बले अनि जे चखाव हांग ने न पुल दुम चामिन अब अ दैन कि तंग पंजनिंग बा हायरगदि थायरॉइड गुली से न यान हान चा दुइने को अदुगा चखाव हांगि ngai द थायरॉइड गुली से चा रम तुंग द ngasaigi atopa chaga da guli sing se mainly ngasaigi akhoi gi chakhau guli hai tare ne ko asi gi guli se na at least minimum pung amma gi difference gi tang tham bi o kai gi no hai ba da ngasai third gi guli je akhoi gi chakhau gi subsan ba matam da ma de tang acidic oi ba medium ma da kar oi ading ngasai chakhau guli thuna di acidic medium jom ha to khran ni ba ko aduna chai hi dak ti chai du kanar roi ba aduna han garam chai du ju thyroid gi ji di adum control ma lai te ga na sum ki tang cha bi niom phang ro kan da si po se na koi ki tang tha ma ni choram ba de ba khang da ba han jin chahi amma he na ma jom jabo ragadi chari baguli du di mai effect to kanabam layer roi ko jom hidak su makhra le iron gi tablet jabada haji ki chakhau guli ji ga jasan min na ba ya de ko pungani gi difference sam da ba ya de mai na hidak chab si su doctor am na ibi rak pa matam da phajan na khang dok pa ko haidi jabe niyom ji ka mind taw bano hai ba gi sum ba khra phajan na hidak pija bi thak taw bu da su niyom khra dum nai bi ba ko adai gi koi ni tang di thapai ngang ma chat pa khot ba haidi han dui manak ta full time le bangam da su dum yaw ni caregiver khra ko adana alarm gum ba adum tham ba ko haidi dak sa matam yo re gan asum ning jangan bagi maina dum adumaina tobi ba ya hai tare hoy adu manipur da ji dum ayam ba jaina dum thing na chab da han namagi di care di phajana to ko adu bo just haji ki ina kitang care to ba da kitang khu gi knowledge kitang watcha bagi ko asum maina to gre hai bagi mudu sudum nungai ja jab pinja da ba sudum lei ni adu gi dum knowledge join haji ki ina sai hai ja gi ba ko bed sor gum ba se di yam phajana line khu ina tam jana sugum ba preventive measure step khara la ho ra ga di bed sor gum ba se ju yam line han da ba ya e tang tham jak
1: ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯒꯗꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯕ ꯇꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 24 hours ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯏꯅꯐ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ blood
0: test aibasi top scan taubasi di every hospital tal loinamak fully yam 24 hours available adum oi jai ko adubo hojiki comprehensive geriatric assessment haibasi di atopa sigi specialty jina oina kitang main focus oina laani ko ai as a geriatrician amoina adu sigi comprehensive geriatric assessment gei nga sai panjagi ba mayam si ama fazanna fully assess tawninga ga di hakjang je ko kok tain ton bu sigi maram je fazan loing thokninga ga di amo akoi hospital haiga tra ko ai ga fazanna ai di geriatrician jam tangi ba ko any india in haibasi india da su yam li e hojik si lei je ko manipur da zom yam li e aduna kitang nauna leiraga su tang han namana maigi hakjang je chehi humphu gi mathak ta sura aga di ko humphu gi mathak lei ba han ngak tani khuina yam ba su ye ngi se ko aduna tang tanaraga haidi khoi quality of life je kitang hena phagat na improve leina marik muhau thok na hing hing ba pa ma ga di ko haita du di pam da ba mi yam ta lei ti haita ko aduna mai nak tang ying thok pi ra ga di kana ga dra na khanje
1: wali wa tai se khoi ma kha ta ba han ning bo wang me ama ma di lei di du bu doctor matangi akakna leibna tension jaraga aroibase doctor ahan gi anaba sing dai amna yeng thamga yeng birak liba doctor amoina koi wari wata sita bili ahan sing gi da mata doctor na thamning ba tips health tips mokoi gi care tips hai bata rena aroibina kitang thambi bata
0: ei khara hai jarong ge ahan gi di hoina cha ba thak ba je kitang yeng ga cha ba hai ba madum lei ko adu de yam na mi lo yan ta na re adu bo kitang a khoina ahan oirak ba gi sarcopenia na masal je kitang chon dharak ba pa tharak ba gi ama mami mayam toin tuina ujai ko sina mara moraga toina tu san gan basu yore ni aduna ahan da di khitang protein gi content se cha ba matam da khitang helening ko haibadi akhoina protein je ayam ba han de mung gi room cha ba cha da basu khara dum lei ko lai da thaja ja ba han du de khoina mu yam ye lu ba ya de ko adum ba gi room gum ba cha ba je nong ma da phut ba matang ora su cha bi ra ga di protein gi content khitang hen ga dra adagi khoi ye du mak na tra su soya bin gum ba cha ba sang sangom sana gum ba su gum ba si jan na ba ya adagi sina dra ga na khoina protein powder haina thoiba ko tungan tungan protein ji ju am hek ta leira ga thakchan ba ya di haibadi diabetes na ba patient oram ba kidney gi liver gi su gum ba si liver gi safe hoiba kidney gi safe hoiba na protein powder si su makhan makhan thoi ko adu ma gi contain ji manung da ju tungan tungan yaw ri ni adu me tang na hana man yam ka he na dum yam son ra ba phamung da du long la ta ra ga leita ba han oi ra ga di adu ma khoi na nong ma da 1 da gi na 1.2 gram per kg per day gi jang la su mai han ji gi weight ji ho to ga du gi jang la dum thak ba yai ko sangom da ya la su ising da ya la su adu ga yam ka hena frel oi ba yam sola ba han ko ale phamung da ga yam ba hip ga leira ba han leng bo ot pa ka ngam da ba han gi oi na di protein gi chang amuk tang hengal han da ba ya di haibadi khoina 1 ngasai du di ki tang hengal ani ko haibadi 1.2 dai na 1.5 gram per kg per day hai tar ese gi chang da no mai na mung si jener aga di han gi masal ma se ki tang hengal han ga ni ko tu san bai chang han dar ka ni ma gi immunity jo ki tang or su kangat kadra mai na ki tang tham ja ge adu ga la dom haji ki ai na haji gi ba blood test khak ta na te han gi oi na di comprehensive geriatric assessment namai am darkar oi han namagi quality of life se kitang phagal han gi hair ga disi hair ga thamsa ge khara
1: yam nungai ji matam gi akak na walai bana khoi hangning bo wahang che me amama ngasi gi kanu stay da khoi tension jira ga khoi gi achin ma matam nga kai thok pira ga ngasi khoi gi studio da lingchin biliba doctor Nirbhama Thaudam, Associate Consultant Geriatric Medicine Babina Hospital Khabai Shoibu Aroi Boina Mukhana Thagachari
0: Thagachari Tamu
1: Haksel gamari leina ba wari watai sigaloina na ngasi gi oina di khungang gi thoram loishin jare chalbe ma adudi chilupa muk hannena ba tawrasi
2: fani fani ta ton na chal su hanjakra ge
1: tabiri ba khoi ponu muk pu aroi boina chilupa na mukhanna
2: khurum jari

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, वो भी 100.1 MHz पर। दोस्तों कहते हैं चेहरा बहुत कुछ कह देता है और आंखें उससे भी ज्यादा। शायद यही समझ का अनुभव कहता है कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए शब्दों की नहीं सिर्फ एक नजर की जरूरत होती है। उस नजर पर पड़े पर्दे अक्सर हट ही जाया करते हैं समय के साथ साथ। जी हाँ, हर श्रृंगार लेकर आज स्टूडियो से साथ हूँ मैं रोहिणी। मेरी दुआ सलाम आप तक पहुंचती है इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है मेरे हुजूर फिल्म से रफी साहब की आवाज में रचा ये गीत। और इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज और आगाज करते हैं आज के हर श्रृंगार का।

बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं हुजूर के, कुछ लोग बिछड़ कर भी नहीं बिछड़ते, वो सांसों में नहीं एहसासों में बसा करते हैं, और ये एहसास यादों के जरिए हमारे जहन को हमेशा अपने खुशबू से तरोताजा महकाते रहते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही एहसासों से सजा ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं प्यार ही प्यार फिल्म से। रफी साहब की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने।

कहते हैं आंखें भी होती हैं दिल की जुबां। अब ये जुबां कभी तकरार चाहे है तो कभी प्यार का प्यारा सा एहसास। बड़े प्यारे अल्फाज हैं दोस्तों के, लड़ने को दिल जो चाहे तो आंखें लड़ाइए, हो जंग भी अगर तो मजेदार जंग हो। एक ऐसा ही प्यारा अंदाज इस गीत में भी आप महसूस करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, ये जो गीत है वो है झुक गया आसमां फिल्म से। लता जी और रफी जी की प्यारी आवाज से सजा ये गीत है। इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। मार्केट मंत्र आप सुन सकेंगे 11:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।

प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मामूली बढ़त हुई। सेंसेक्स 262 अंक यानी 0.3% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक यानी 0.4% बढ़कर 24,271 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग सपाट रहा।

0: बाजार बढ़त के साथ खुले और पहले के आधे सत्र में तेजी का रुख रहा, लेकिन दूसरे सत्र में मुनाफा वसूली के कारण दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और आज मिलाकर लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए।
1: The benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 262 points or 0.34% to close at 77,764. The Nifty also added 95 points or 0.4% to settle at 24,271. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index slipped 0.2%, while the small cap 100 index ended nearly flat. Earlier, the markets opened higher and maintained upbeat momentum throughout the first half. However, in the latter half of the session, both indices paired their early gains amid profit booking but managed to close higher for the third consecutive session.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में HCL Tech 5.8%, बजाज फिनसर्व 2% से अधिक और टेक महिंद्रा तथा भारती एयरटेल 1.8% बढ़े। वहीं बात खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की करें तो एक्सिस बैंक 1.5% से अधिक, SBI तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% से अधिक गिरे और लार्सन एंड टूब्रो में 0.8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, Realty jumped 2.2%, Focused IT rose over 1.7%, and IT climbed more than 1.5%. In contrast, Power plunged 2.4%, Capital Goods fell almost 2.3%, and PSU banks lost over 1.6%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,257 companies advanced, 1,986 declined and 198 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 17 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए और 22 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.71 पर कारोबार कर रहा था। विशाल, आज की ट्रेजेक्ट्री को आप कैसे आंकते हैं, मार्केट ट्रेजेक्ट्री को?
2: देखिए प्राची, आज तो सब तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है। अगर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी ऊपर है और सोने और चांदी की कीमतों में भी उछाल है। हालांकि ग्लोबल मिक्स्ड क्यूज है मोटे तौर पर अगर देखा जाए, और समझने की कोशिश करें तो आईटी सेक्टर जिसने पिछले हफ्ते काफी नीचे खींचा था मार्केट को, खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सेक्टर से संबंधित जो स्टॉक्स थे उनमें जिस तरह की गिरावट दर्ज की गई थी वैश्विक स्तर पर, उसका सीधा असर भी देखने को मिला था। लेकिन ये आज अच्छा रिबाउंड है, लगभग 2% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी है आईटी सेक्टर के, और आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर रहा है आज बाजार के ऊपर पहुंचने में, ऊपर आने में। इसके अलावा कुछ ग्लोबल क्यूज हैं, जैसे कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अब लगभग राहत की बात यह है कि थोड़े पॉजिटिव संकेत इस तरह के मिल रहे हैं और थोड़े पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। पॉजिटिव संकेत तो लगभग हर हफ्ते मिलते थे और फिर वो नेगेटिव में बदलते थे, लेकिन इस बार शायद पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि अब ये लड़ाई खात्मे की ओर है। लेकिन उससे बड़ी बात US जो जॉब मार्केट का जो डेटा आया है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अब हालांकि सीधे सीधे देखा जाए तो पिछले 4 महीने में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है जो नई नौकरियां बनी है US की मार्केट में, और इस लिहाज से देखा जाए तो वो कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां फेड रिजर्व के नए गवर्नर आए हैं, उनका स्टैंड बहुत ही हॉकिश है, और उसके चलते ये जो डेटा है शायद ये डेटा थोड़ी सी राहत प्रदान करे इस मामले में कि शायद जो फेड रिजर्व है वो उसका जो हॉकिश स्टैंड है उसमें थोड़ी सी ढील बरतें वो, और इसीलिए शायद जो इन्वेस्टर्स है खासतौर पे जो US के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका नजरिया मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही माना जाएगा। और अगर अमेरिकी बाजार में कुछ पॉजिटिव नजर आता है तो उसका असर बाकी बाजारों पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पॉजिटिव ही दिखाई देता है। अगर कोई और बड़ी खबर या कोई और बड़ा कारण ना हो तो.
1: Vishal, I'd like to draw your attention to the broader market here. If you look at the mid-cap and the small-cap segment, you know, we have been seeing this uptick in the overall market for the past few sessions now. But this broader market has not been quite performing up to that level, you know, up to the, you know, the level which people would have expected. So what do you see the reason behind this?
2: Well, I think, you know, Nishit, let's not...
1: Mid-cap slip, although it's a marginal slip, 0.2%.
2: Yeah.
1: And the small cap was flat today, but mostly it's not kind of picking up, you know, kind of keeping pace with the overall market.
2: I get the sentiment, you know. Usually it's not about it's not performing well. It's about, you know, why are we not picking? Why is the market not picking?
1: True.
2: You know, taking up that pace.
1: Yes.
2: Now let's not, you know, and when we look at this question largely, we should also look at a little bit of a context here. Now, if we contextualize it and if we go back a little bit, this is not the case today. This was not the case in the past 3 days. If we do a larger understanding of the scenario for the past month or 2 months or 3 months as well, let's also understand that there was a lot of pressure on the market in terms of a lot of negative global cues. The crisis in the energy sector, the oil prices going up and then coming down, then again going up. A lot of, confusion as far as investors are concerned. And that also led to a lot of, outflow of FII as well from the market. That is something which it takes a little bit of a time for the market to, you know, take those positive cues which are coming in right now, absorb them and, you know, pick up the pace. It is picking up the pace in certain sectors, one here, two there, or maybe going a little flat in certain sectors as well. But it will take some time. I'm pretty sure it'll come back. There are positive cues coming in, but yes, they're absorbing it and perhaps realizing investors are very smart, you know, they're the smartest of the lot as far as, economic aspect is concerned. So they would not put their money where they don't think, they will get some return in the long run.
1: Vishal, you mentioned about the energy crisis, of course, you know, courtesy of the West Asian crisis has happened. But if you look at the power sector here, you know, it has been, it has performed exceptionally well over the past 2-3 months, if you may say. But over the past 10 sessions or 15 sessions, it's been kind of plateauing now, or rather slipping. Even today, if you look at the sector, it plunged 2.4%.
2: Well, that's a simple mathematics out there, Nishit. The point is that when the energy crisis hit, of course, the power sector was pretty much in demand. You know, there was a lot of... it's like a demand and supply gap. That's one. And two, the power sector companies, you know, did not disappoint. They did not flounder when the focus was all on them. And that is why this demand and supply gap, which was there due to energy crisis and all that happening, all eyes on the power sector, you know, as long, let's look at what is it that can be done. And that perhaps was the momentum. Right now, again, we come back to the same situation. The oil prices are coming down. The energy crisis is ebbing away. So, you know, that gives a bit of a elbow room as well. So it might sound very amusing, but this is how it happens, you know. In the stock market, this is how it's going to happen. Of course, that doesn't mean that the fundamentals of a particular sector or a particular company or their performance or their management does not count. It does count. But yes, if there are global factors, sometimes they overshadow the overall situation and the performance as well.
0: Vishal, aapne power ke kshetr ki baat ki, aapne IT ke bare mein bataya, aapne ye bhi beech mein bataya ki aisa kahin par bhi agar lagta hai ki khatra hai paise ko nishit, to kyon koi jayega aur us sector mein, us kshetr mein apne paise lagayega. To niveshakon aur hamare program ke shrotaon ki nazar se aap agar dekhe ise, to aap kya suggest karenge, aapke hisab se aise kaun se kshetr hain jinka momentum aapko is dauran mein badhta hua nazar aa raha hai?
2: देखिए, मैं तो हमेशा ऐसी बात को कहता हूं कि निवेशकों के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर जो शॉर्ट टर्म असेसमेंट करने की कोशिश की जाएगी, तो मेरा मानना है कि वो शॉर्ट टर्म असेसमेंट हमेशा, अगर हमेशा नहीं तो ज्यादातर समय पर गलत ही साबित होगी. क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं. आप अगर शॉर्ट टर्म मान के भी चलते हैं तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही रहेगी. क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप सोचेंगे कि चलो थोड़े दिन और देख लेते हैं, तो वो अपने आप लॉन्ग टर्म हो जाएगी. तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को एसेस करिए. आप ये मत देखिए कि पिछले एक हफ्ते में किसने अच्छा किया या पिछले 15 दिन में किसने अच्छा किया. ऑफ कोर्स पिछले 2 महीने में जब ये पूरी ग्लोबल क्राइसिस रही, तो रेजिलियंस किस सेक्टर का था, रेजिलियंस किस पर्टिकुलर कंपनी का था, वो बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन फंडामेंटल्स किसके अच्छे हैं, नंबर एक. नंबर दो, ग्रोथ किस सेक्टर में है, नंबर तीन, क्या केवल ग्रोथ इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं, या ग्रोथ इसलिए भी है कि जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको सपोर्ट कर रही है? तो इस तरह से जो सेक्टर्स को अगर चूज किया जाए तो हमेशा से जो पिछले लगभग साल दो साल से जो सेक्टर्स बने हुए हैं और अभी भी वही बने हुए हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर स्पेस हुआ या फिर उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी रिसोर्सेज हुआ, पावर सेक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कभी गिरावट दिखाई दे सकती है, आईटी सेक्टर इज ऑलवेज अ ग्रीन सेक्टर, एआई ऑफ कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप में थोड़ी सी एब्जॉर्ब करने की ताकत है और शक्ति है तो अगर जो झटके बीच बीच में मिलेंगे उसको, तो मेरा कहना है कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचिए।
1: राइट,
0: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और रुख करते हैं एशियन बाजार की तरफ। आज एशिया का शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 5.8% बढ़ा। पिछले सत्र में हुई भारी बिकवाली के बाद निवेशकों ने कम कीमत वाले सेमीकंडक्टर शेयरों की आज खरीदारी की। इधर जापान का निकेई 1.5%, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.5% और ताइवान का ताइएक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। विशाल, अगर हम वैश्विक टेक ट्रेंड की बात करें तो नैसडैक एक महीने में तकरीबन 3% गिरा है, कॉस्पी 13% गिरा है, वहीं जो महीने भर में निफ्टी है वो 3.3% उसमें बढ़त आई है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल टेक ट्रेंड में रिवर्सल है?
2: देखिए, मैं टेक ट्रेंड में रिवर्सल तो इसे नहीं कहूंगा क्योंकि जब हम कॉस्पी की बात करें या नेस्टेक की बात करें और भारतीय बाजारों की बात करें, एक इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं
0: जी।
2: और जहां गिरावट ज्यादा दर्ज हुई है वहां अगर आप थोड़ा सा उनकी इकोनॉमी पे और गहन तरीके से नजर डाल के देखें तो ये भी समझ में आएगा कि वहां जितने पॉजिटिव क्यूज डोमेस्टिकली मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले उन बाजारों को। भारतीय बाजारों को पॉजिटिव क्यूज हमेशा मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ग्लोबल क्राइसिस थी, जो वेस्ट एशिया में जो हो रहा था, मध्यपूर्व में जो हो रहा था, उसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस थी, उसका सीधा और बड़ा असर इन बाजारों और इन देशों में देखने को मिला। हम पर भी असर पड़ा, ऐसी बात नहीं है कि हम पे नहीं असर पड़ा, लेकिन उस हद तक नहीं पड़ा, उस लेवल तक नहीं पड़ा। और हमारे जो जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक और बाजार के, मार्केट्स के भी, उनमें इतनी कुवत थी कि वो उसको, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए। इन बाजारों में और इन देशों में भी है, लेकिन इनकी निर्भरता हमसे कहीं ज्यादा है
0: जी।
2: इस मायने में क्वांटिटी के मायने में नहीं, लेकिन इस मायने में कि उसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पे किस तरह से पड़ता है। हमारे पास और भी तरीके हैं, और भी हमारे पास खपत के जरिया है, हमारे पास सप्लाई का जरिया है, हमारे पास डिमांड को मीट करने का जरिया है, उनके पास उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और इसीलिए आईटी सेक्टर और इस तरह के सेक्टर्स में जब ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो उसका सीधा असर पहले वहां देखने को मिलता है, उसके बाद यहां देखने को मिलता है।
1: राइट, एंड इन सम अदर स्टोरीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे सेड दैट इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव $1 trillion एक्सपोर्ट टारगेट्स फॉर द ईयर विद नियरली 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that India's export strategy is being built around a stronger, more inclusive approach in which every state, district and industry segment is treated as equally important.
3: Our aim is not small. Our aim is to grow in the current year. We were $863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach $1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about 530. $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470. That is how we'll reach a trillion, which is a growth of about 11%.
1: The minister highlighted that the central government is planning to expand the export base beyond the traditional hubs by making every district in the country an export hub. He said that the government is simplifying procedures, reducing compliance burdens, and improving the ease of doing business to support the export ecosystem. Mr. Goyal emphasized the role of Export Promotion Mission in helping businesses with branding overseas, warehouses and exhibitions abroad, and urged exporters to make full use of newly operational and upcoming free trade agreement FTA, including those with Oman, Switzerland, the UAE and the UK. Vishal, talking of we heard what Piyush Goyal was saying today, you know, and talking of free trade agreement, especially with the European Union, which was touted as the mother of all trade agreements, right? Oman, Switzerland, UAE and the UK now, especially the outreach is, you know, tremendous kind of happening all over, all around the globe. So now with this export target of achieving of $1 trillion, more than that, for the year, with nearly 50% of annual exports already recorded, how does it stack up?
2: Well, I believe, Nishit, this is just the beginning, because, and I'm calling it just the beginning and just the tip of the iceberg, because of the fact, as you pointed out, these FTAs starting with the European Union, Oman, Switzerland, UK, and several other countries as well. And before that, we've done it with other countries also. And we're negotiating more such bilateral agreements with other nations. Now, is the time when, you know, most of these economies and most of the countries on Earth, economically speaking, they're becoming more nationalistic. You know, their policies are more inward looking. So if their policies are more inward looking, we will have to go beyond the multilateral forums or trilateral forums and agreements as well, and focus on the bilateral agreements, because everybody is trying to look out for themselves. So nothing wrong in that. So, right. But we shouldn't be missing the bus, and that's why we moved on to that particular approach, and that is why we're focusing on these FTAs. And this is the result of these FTAs and several others which are in the pipeline. They're being discussed, they're being negotiated, even trade deal with the United States and all that. So whatever is happening is because there is an individual focus on individual economies. You know, if you and me or anybody else, you know, wants to go ahead and export something, we don't have to look at an umbrella structure. We know which country we are exporting to. We can look at the benefits which we have in that particular agreement, and then we can go ahead and move on. It is not necessary that whatever our export to Oman will be the same might be for EU or Switzerland or something, because it is country specific and it does benefit both the nations, and those that is something which reflects in these numbers.
1: Vishal, you mentioned the US. Does it still remain the Achilles heel when it comes to trade agreements?
2: It will always, not for us, but for everybody else. Yeah. Everyone around the world, because let's not forget, it has not been much time since the tariff, bombs were being thrown by President Trump on everybody, all countries across the world. And that threat still remains. I think once this West Asia or Middle East, whatever you want to call it, that crisis is over, I believe
1: probably his attention is kind of
2: his attention more. Might again go back to the same aspect.
1: Absolutely. And in some other stories, Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the India-France strategic partnership is well-placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said that the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The finance minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Viksit Bharat 2047. She called for strengthening the India-France strategic partnership to achieve shared prosperity. She said that India and France are trusted partners in shaping the global AI ecosystem. She noted that this partnership offers new opportunities in trusted AI, digital infrastructure and the next generation technologies.
0: Pradhan Mantri Narendra Modi somvar se Indonesia, Australia aur New Zealand ki 6 din ki yatra par jayenge. Videsh Mantralay mein Purvi Mamlon ke Sachiv Rudendra टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उनकी मुख्य बैठकें जकार्ता में होंगी। इसके अलावा वे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर योग्याकार्ता भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। श्री टंडन ने बताया कि यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। मेलबर्न में वे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। श्री टंडन ने साझा किया कि यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। वहां वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लेक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 26 जून को समाप्त हुए सप्ताह में 5.5 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक घटकर 666 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार ये गिरावट सोने के भंडार में कमी आने से हुई है। ये 5.3 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक घटकर लगभग 102 अरब अमरीकी डॉलर पर आ गया है। इसके विपरीत विदेशी मुद्रा संपत्ति जो भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है इस सप्ताह के दौरान 150 मिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 541 अरब अमरीकी डॉलर पर आ गई है।
1: And moving on to crude now, the global crude oil prices declined today. The Brent crude was trading 0.2% down at $71.68 per barrel. The West Texas Intermediate crude was trading 0.4% down at $68.41 per barrel when reports last came in. Vishal, from $120 to $71, talking of the crude, and $68 when we talk of the WTI.
2: Isn't,
1: what's happening?
2: Isn't that the most beautiful picture which can be painted with words in the past 2 months or so, 2.5-3 months, I guess? 68, 70, these baskets, you know, when they were touching 120, as you're pointing out, yes. Everything seemed like, you know, a little difficult to negotiate, maneuver as well. And we did feel the impact also, but I think it's easing down now, and right. The numbers are speaking for themselves. I think it'll settle down at this particular level or go maybe go a little.
1: Do you see the prices coming down to as low as maybe 50 or something?
2: Little lower, I believe, not more than that, because let's not forget that the warring sides are yet to settle down everything. You know, there's still some fissures which remain. There are still skirmishes which is happening, and then there is another conflict which still goes on between Russia and Ukraine. So that has some impact, not much impact, but some impact. So I believe this is where it's going to settle down, maybe plus minus 2-3% this way or that way. That's the maximum I'm looking at. But yeah, this is something which gives a lot of breather, a lot of maneuver room for economies around the world to take a deep breath, regroup and move on. As far as we are concerned, we've already started doing that. Some of the restrictions which are put in place temporary restrictions which are put in place have already been announced by the government that they've already been removed. That is a clear indication that there is no problem as far as supply is concerned of the petroleum products or related other products as well. Good indication for both the public at large and for the market and for the industry as well. I think now's the time to, as we say, get into the fifth gear and start moving.
1: Right.
0: Raahat ki saans hai.
2: Right. Bilkul.
1: And in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading almost 1.4% up at 1,48,150 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.9% up at 2,37,710 rupees per kilogram a short while ago.
0: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona lagbhag 1.5% की तेजी से 1,47,779 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 2% की बढ़त के साथ 2,37,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। विशाल, जाते जाते आपसे एक टिप्पणी सोने और चांदी के भाव पर।
2: देखिए, सोना चांदी जहां है, मुझे लग रहा है इस वक्त जहां है वहीं टिके रहने की उम्मीद है। अच्छा। और उसका सीधा इंडिकेशन ये दिखाई दे रहा है कि बाकी सब जगह सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए सोना और चांदी अपना अपने अपने स्थानों पर यथावत बैठे हैं। ज्यादा उठापटक उसमें नहीं दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उठापटक थोड़ा और आगे तक दिखाई भी नहीं देगी।
1: Will it kind of plateau for another maybe a decade or so? As the history, if you go by the history.
2: I'm not going to stick my neck out and say a decade or so, but maybe for some time at least.
0: Vishal, karyakram mein aane ke liye aur hamare tamam sawalon ke jawab dene ke liye bahut bahut dhanyawad.
2: Thank you.
1: Thanks, Vishal. And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices end with modest gains. Sensex climbs over 250 points. Nifty settles at 24,271. Major Asian stock markets settle in the positive zone. And in Indian bullion market, gold and silver prices rise. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गीत मेरे मन मीत लेकर स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूँ मैं रोहिणी। जी हाँ दोस्तों, इस गहरी काली रात में सदाबहार गीतों का साथ जो कि बना रहेगा आपके साथ। वो कहते हैं ना, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चरागों का सफर कितना है। ये सफर आप तय कर रहे हैं दोस्तों 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आइए आगाज करें आज के इस प्यारे सफर का तेरे घर के सामने फिल्म के गीत से। और इस गीत में आवाज दी है रफी साहब ने, लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने, संगीत से सजाया ST परमन जी ने।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। तो और ये रात जो कि महक रही है चांदनी से, और इस प्यारे से समय में ये बेहद प्यारे सदाबहार गीत आप तक पहुंच रहे हैं। ये अगला गीत प्यार का मौसम फिल्म से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस गीत को लिखा है मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है ST बर्मन जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज़।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में, और ये अगला अंदाज शागिर्द फिल्म से आप तक पहुंच रहा है। रफी और लता जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज से सजाया मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज़।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि और आज के सफर को आगे ना बढ़ाएं। तो फिलहाल मुझे आज के सफर को यहीं समेटने की दें इजाजत, और बड़े ही प्यारे अल्फाज जो कि आपसे साझा करना चाहूंगी, बेशक दिन में भुला दो तुम उजालों के मायने, स्याह रात में तो रहेगा ही इंतजार चांद का। जी हाँ, इंतजार और ये सफर आप तय करते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। फिलहाल आपको छोड़े जाती हूँ इस प्यारी सी आवाज के साथ, इस प्यारे सी गीत के साथ। मुझे रोहिणी को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबर पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है।

नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विम्बलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका के डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानरे को 6-1 6-3 से मात की दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, पर अब भी बारिश देखकर लगता है जैसे कोई जादू पहली बार देख रहे हो। तुम्हें मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ कि रोज़ तुम्हें देखना कैसा होता है।

मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 2 सेकंड। निशिकंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।

0: वाकई हवा के साथ साथ और घटा के संग संग चलना ही जिंदगी है। कुछ गाने हमें ये एहसास दिलाते हैं कि सफर हो या मंजिल, रंगत तभी आती है जब मन खुश हो। अगला गीत फिर से आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

मोहब्बत में कश्मकश ही ऐसी होती है, समझ ही नहीं आता, दिल की बातें जुबा तक आकर ठहर जाती है, रुक जाती है, समझ नहीं आता कि उन्हें बयां कैसे किया जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि कह देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आती है। क्या कहते हैं आप? अब ये भी कोई पूछने की बात है, सफर वही जो साथ साथ तय किया जाए। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

सच में मुंबई की बात ही अलग है। मुंबई का नाम आते ही बहुत सी चीजें दिमाग में आने लगती हैं। वहां की लोकल ट्रेनें, समंदर, सब कुछ जहन में फिर से एक बार याद आने लगता है। मुंबई का अपना ही एक रंग है, अपनी ही एक दौड़ है, कहीं पहुंचने की, कुछ पा लेने की, कुछ ख्वाबों को पूरा करने की। फिलहाल हम भी एक दौड़ में शामिल हैं और इस दौड़ को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत लता जी की आवाज में।

तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। छिपने की जितनी कोशिश करोगे उतना करीब आएगा, और जब वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा वो इतना गहरा होगा कि तुम्हारी प्रेम पर लिखी कविता फीकी पड़ जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपकी

इस साथ आपकी रात की हम सफर बंजू वक्त वह है 12:38 और 42 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में

जब दीवानगी का ऐलान हो ही गया है तो फिर दीवानों को रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी हो या फिर मोहब्बत, दोनों को दीवाने ही सबसे ज्यादा समझ पाते हैं। और वैसे भी दिल में जब प्यार का जज्बा होता है तो कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। इस दीवानेपन को और आगे बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ।

अपनी दुनिया में और शायद अपने लोगों के पास। कभी कभी अपनी दुनिया में लौट आना ही सही विकल्प होता है, खुद को बेहतर तरीके से समझने के लिए। हम दूसरों को समझते और समझाते हुए अक्सर खुद को समझना भूल जाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। खुद को समझना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैट, BMS, इपॉक, IIN और लॉसिंगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी एक ऐसा दौर जो इतिहास से, स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, हमें पुकारता है। तो चलिए फिर इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ।

चौदहवीं का चांद से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत बहुत ही सुरीली आवाज में, यानी रफी साहब की आवाज में। संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। फिल्म चौदहवीं का चांद 1960 में प्रदर्शित हुई थी और इसका निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने और निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त साहब के लिए ये फिल्म कामयाब फिल्म रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक फिल्म थी ये। रवि द्वारा निर्मित संगीत को काफ़ी लोकप्रियता मिली और दर्शकों द्वारा इस फिल्म के संगीत को खासा सराहा भी गया। और अब अगला गीत हम सुनते हैं फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: करूंगा।
1: रफी साहब की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत, फिल्म का नाम था असली और नकली, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। फिल्म असली नकली 1962 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, देवानंद, साधना, लीला चिटनिस, अनवर हुसैन, संध्या रॉय और केस्टू मुखर्जी ने इस फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। और अब अगले गीत की बारी, लेकिन अगले गीत को आप तक पहुंचाने से पहले अगर आप जाग रहे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला गीत रात के जज्बात को और गहरा करता है। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आप ही के लिए।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म अनाड़ी से। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। अगर फिल्म अनाड़ी की बात की जाए तो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1959 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और मोतीलाल ने। इस फिल्म के गीत लिखे थे शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब। अब जब रात की बात छिड़ी है तो फिर रात का मुसाफिर क्या कह रहा है, सुन लिया जाए अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म मिस मैरी से।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 40 सेकंड और आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। एक ऐसा दौर जो इतिहास और स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, तो ज़रूरत है उन गीतों को महसूस करने की। तो चलिए फिर सुनते हैं हम अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत चित्रगुप्त का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। अगर इस फिल्म की बात करें यानी कि ओपेरा हाउस फिल्म की हम बात करें तो ये फिल्म आई थी 1961 में और ये एक रहस्यमय फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में अजीत बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने अभिनय किया था। और अब अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म बहू बेगम से।

फिल्म का नाम बहू बेगम और आवाज़ें थी आशा जी और रफ़ी साहब की। संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। फिल्म बहू बेगम 1967 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था एम सादिक ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। संगीत रोशन साहब का था और इस फिल्म के संगीत को दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया और ये गीत, इस फिल्म के जो गीत हैं वो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म तीसरी कसम से।

वक्त हुआ है 1:54 और 22 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने, मेरे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू के साथ। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता को सच्चाई, ईमानदारी और सबसे ऊंचे पेशेवर मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नई दिल्ली में साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र तब फलता फूलता है जब प्रेस अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए लोगों को जानकारी देता है, सवाल पूछता है और जानकारी पूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देता है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस, इपॉक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1, 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1, 6-3 से मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

उसने बड़े अदब से पूछा, अगली मुलाकात कहाँ होगी? मैंने कहा, आसमानों में, दो बादलों की टकरार में, भीनी माटी की खुशबू में, खिड़की पे बारिश की बूंदों में, मोगरे के फूलों में, अदरक वाली कड़क मीठी चाय से उठते उस धुएं में, रहमान के किसी गाने की धुन में, रुके हुए से ट्रैफिक जैम में, शर्ट के टूटे हुए बटन में, गहरे काले काजल में, पहाड़ों में, बहते झरनों में, कहीं साहिल तो कहीं किनारों में, मौसम की बहारों में, हम मिलेंगे ज़रूर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 15 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी कि जज्बातों की रात, एहसासों की रात। और इस प्रोग्राम में हम रात के जज्बात को, रात के दर्द को अपनी बातों से, गीतों से और कुछ कुछ शायरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

आपको पता है, जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो में हवाएं चलने लगी हैं सच में, और टेम्परेचर भी कुछ कम हो गया है। इस गाने का एक एक सुर सीधे दिल में लगता है, और दिल में लगने के साथ सीधे दिल में असर करता है। अगर आप भी इस गाने को सुनकर किसी के ख्यालों में खो गए हैं, किसी की यादों ने आपको घेर लिया है, तो अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

वैसे ये तो सच बात है कि मोहब्बत किस्मत वालों को ही मिलती है, और जब मिलती है तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर ये मोहब्बत इतनी ही अनमोल है, इतनी ही कीमती है, तो लोग इसे संभाल कर क्यों नहीं रखते? छोटी छोटी बातों पर रूठ क्यों जाते हैं? खैर, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपका ख्याल रखता है, तो आपको खुदा को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में।

मन में तितलियां उड़ी, कुछ जादू सा लगा। सच में इस गाने की खासियत ही यही है, एक जादू सा एहसास से भर देता है ये गाना। वैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप बस यूं ही बैठे हों और अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए और फिर बिना कुछ कहे आपके दिल में समा जाए? आपको पता है फिर कैसा लगेगा? फिर ऐसा लगेगा शायद इस गाने जैसा। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, नए किरदार आने लग गए हैं। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, परिंदे आने जाने लग गए हैं, हम अपने दुख गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। स्वादिश मिलो एक मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:42 और 6 सेकंड और आप सुन रहे हैं रात सुरमई। रात की सुरों को, रात के जज्बात को, रात के एहसास को, रात की दर्द को गीतों से, बातों से समझने की, महसूस करने की एक छोटी सी कोशिश। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में अभी के लिए।

वैसे ये तो सच बात है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल लगता है। वो चाहे हमारे पास हों या हमसे दूर हो, उनकी मौजूदगी हर पल हर सांस में महसूस होती है, बिल्कुल हवा की तरह, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर उसके बिना जी भी नहीं सकते। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। हम रोज ना जाने कितने अनजान रास्तों से गुजरते हैं, कितने ही चेहरों को देखते हैं, पर कभी कभी बस यूं ही चलते चलते कोई ऐसा मिल जाता है जो अजनबी से सीधे हमारी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन जाता है, खास इंसान बन जाता है। ना कोई प्लानिंग होती है, ना कोई तैयारी होती है, बस एक मुलाकात होती है और पूरी तकदीर बदल जाती है, जिंदगी की कहानी बदल जाती है। अगला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में आप ही के लिए।

गीतों का ये सुरीला सफ़र यहीं तक, रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 154 के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपॉक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। फीफा विश्व कप में अमरीका के आर्लिंगटन में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बना ली है। मैच के पहले हाफ में मिस्र ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। इमाम अशू ने 13वें मिनट में एकमात्र गोल किया। राउंड ऑफ 32 के अन्य मैचों में अर्जेंटीना का मुकाबला मियामी गार्डन्स में काबो वर्डे से होगा, जबकि कोलंबिया आज सुबह कैंसस सिटी स्टेडियम में घाना से भिड़ेगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नावे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही समाचार

दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं FM गोल्ड पर और हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

यादों की बारात, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और संगीत आर डी बर्मन का। अगला गीत आप सुनेंगे कस्मे वादे फिल्म से, आशा भोंसले और किशोर कुमार और अमित कुमार का गाया हुआ है। शब्द रचना गुलशन बावरा की है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, ये तो हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में खुशियों की बहारें आती रहें, लेकिन बहुत बार आप छोटी सी बात का बुरा मान जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। और नाराज़ आप क्यों होते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि वो आपको मनाएंगे।

दोस्तों, एफएम गोल्ड पर हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत आप गीत सुन रहे हैं, यानी युगल गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।

दोस्तों, बहुत बार प्यार भी मुसीबत बन जाता है, या नहीं यूं कहें कि अफसाना बन जाता है कोई ना कोई। आपको बता दें कि ये गीत आपने सुना प्यार बना अफसाना फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ थी। गीत के रचयिता थे अजीज कैसी और धुन बनाई थी इकबाल कुरैशी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं घर फिल्म से। गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में है, शब्द रचना गुलजार की और संगीत आरडी बर्मन का।

दोस्तों, पहले के दौर में जब मोहब्बत की बात हुआ करती थी तो बात सुनकर प्यार करने वाले शर्मा जाया करते थे और प्यार करने वाले

झुके जो तेरे नैना। कंगन फिल्म से ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर और उषा खन्ना का गाया हुआ गीत था अनजान का, और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं साथ साथ फिल्म से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का गाया हुआ है, जावेद अख्तर के बोल हैं और कुलदीप सिंह का संगीत।

सागर फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत को रचा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं प्यार का, सागर फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। प्रेम धवन ने गीत को लिखा है और रवि का संगीत।

दोस्तों सच में जो प्यार करने वाले होते हैं वो यही सोच कर डरते रहते हैं कि कहीं उनका साथ छूट ना जाए। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ। संतोष आनंद का लिखा गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, हमराही कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। जुड़े रहिएगा FM गोल्ड के कार्यक्रमों के साथ। अगले कार्यक्रम अरुणिमा में 4:11 पर फिर से मुलाकात होगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालूतारा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

0: नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉन्सगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिम राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों बहुत से गाने जब चलते हैं तो साथ साथ गुनगुनाने में भी उनको बहुत मज़ा आता है। आपने ये गीत सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी, SH बिहारी के बोल थे और OP नैयर का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं खुशबू फिल्म से, गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है, गुलजार ने गीत के बोल दिए हैं और संगीत से संवारा है RD बर्मन ने।

दोस्तों, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान को लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं रहा, और वैसे भी अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं मंजिलों को पाने के लिए।

दोस्तों, इस गीत में बहुत अच्छी पंक्तियाँ थी कि बिछड़े दिलों को मिलाते चलो। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी में भी आपस में अगर कोई बात हो जाती है तो लोग आपस में बोलना छोड़ देते हैं। फिर कोई ऐसा काम करता है तीसरा बंदा आकर कि उन दोनों के बीच में और लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समझदारी से उन दोनों को दोनों का ही पक्ष लेते हुए समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, बात हो गई तो आया जाई करो, आया गया करो इस बात को। तो यहाँ पर बिछड़े दिलों को मिलाने की बात सही साबित होती है। तो हमारा भी काम यही रहना चाहिए कि अगर किसी की बात में कोई आपस में मन में रंजिश पैदा हो गई है तो हम उनको मिलाने का काम करें, ना कि उनका दिल में जो प्यार पहले था उनमें दूरियां पैदा करें।

0: चले।
1: लेकिन हम अभी कहीं भी नहीं जा रहे हैं। प्यासा सावन फिल्म से आपने गीत सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ, और लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया हुआ था ये गीत। आनंद और गुलशन बाबरा का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दूसरों अगला गीत सुनवाएंगे लेकिन अंतराल के बाद।

हिमालय की गोद में, इस फिल्म में से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, हर इंसान सपने बुनता है और सपनों को पूरा करने के लिए पूरे दांवपेच लगा देता है और फिर उसको लगता है कि अब उसका जीवन बहारों जैसा हो गया है।

आखिरी खत। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ, कैफी आजमी की रचना थी और खयाम का संगीत। दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है गीतों के साथ।

दो बदन। इस फिल्म से आपने गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में, शकील बदायूं की रचना थी और संगीत रवि का। ठंडी हवाओं में दोस्तों अगर यूं ही कोई मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना।

बेटी बेटे, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। दोस्तों, अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ सुजाता फिल्म से, जो बचपन की याद दिलाता है। बचपन दोस्तों वाकई में ही गुजर जाता है, वो लम्हे, और बड़े होने तक हमें वो बातें याद आती रहती हैं।

0: रात कभी कभी।
1: और अब कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ आया सावन झूम के इस फिल्म से ये गीत।

जाने का तो दोस्तों किसी का भी मन नहीं करता, लेकिन जाना तो पड़ेगा इस कार्यक्रम को खत्म करके। और इसके साथ ही अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा

0: गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र बांटने का काम अभी चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 13,000 से ज्यादा बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन और अपडेट करने के लिए पहले से छपे हुए गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां देंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भी भर सकते हैं। सरकार ने बैट बीएमएस ईपोक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और गूगल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इस ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एमएसटीसीएल लिमिटेड के माध्यम से हॉकर 800A विमान की नीलामी की है। विमान को 3 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। निदेशालय ने एक बयान में बताया कि इस विमान को पिछले वर्ष 7 मार्च को तलाशी अभियान में जब्त किया गया था। ईडी की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान को जब्त किया था। जांच में 792 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना मिली है। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल वास्तविक निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakhs passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Mr. Modi will also hand over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi last evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said, India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said, Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Tista River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development

दोस्तों, जब भी मैं ये प्रार्थना सुनती हूँ तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी वो कविता याद आ जाती है, आत्मत्राण, जिसमें कवि ने कहा है, विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊँ भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो कितनी अच्छी कविता की पंक्तियां हैं और इस गीत में भी, इस रचना में भी हमें सुनने को मिलती हैं कि हमें शक्ति देना दाता। इंसान तो दोस्तों काम करता ही रहता है, लेकिन उस काम में हिम्मत वो दे दे तो शक्ति बढ़ जाती है, यानी काम करने में मन दोगुना हो जाता है।

दोस्तों सच बात है, ये तो इंसान के बनाए हुए नियम हैं। भगवान तो हमें विवेक से भेजते हैं, हमारी बुद्धि यहाँ आकर इस दुनिया में कैसी हो जाती है ये हम पर निर्भर करता है, और हमारी बुद्धि सही रहनी चाहिए।